जाने मन आ, जाने मन आ, गले लग जा, जाने मन आ, जाने मन आ, जाने मन आ, गले लग जा, जाने मन आ।

0: से लगातार बोली रहने, छारे रोग, मृगी रोग, लगातार बेहोश होने, अत्याधिक रक्षी सेवन तथा लागू पदार्थ सेवन यौनिच्छा में कमी आने, बेचैन भई राखने, बच्चा ने ओछान में पिशाब फेरने जस्ता समस्या भय में नियमित उपचार करे निको न होने समस्या छ। यदि
1: नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ मानसिक अस्पताल लगन खेल का पूर्व प्रमुख कंसल्टेन्ट मोहन राज श्रेष्ठ लाखे पोखरा आउँदै हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य लाभ लिनु होला। बिरामी जाँच प्रत्येक महीना को अंतिम शनिवार अर्थात यही जेठ 30 गते शनिवार बिहान 9 बजे देखि दिवसो 3 बजे सम्म। संपर्क परिचित मेडिकल हल प्राली पालिखे चोक पोखरा। संपर्क नंबर 061-581-871। मोबाइल नंबर 98434-32-29।
2: सर्वाधिक बिक्री हुने ह्युन्डई गाड़ी को शोरूम पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर तथा पोखरा को प्रतिष्ठित लक्ष्मी ग्रुप द्वारा संचालित शोरूम सेल्स सर्विस स्पेयर पार्ट सबैको सेवा सहित एलआई मोटर्स। विस्तृत जानकारी को लागि एलआई मोटर्स बुद्ध चोक पोखरा। फोन नंबर 061-527-426-537-526।

0: कति छ्याब डिजाइन बे मारेको न खिनानी खनि तोला
1: खनै बिवा ना सर्वे रूपाकोट ज्योति सुनचाँची दुकान महेन्द्र पुलारी तोला
0: ए नै स्याबा मार दोकान पो मोना नै पेसोलाई नै च्याबा चुरा रैया औठी हमेला झोका टस सिक्री हार तान चनै त हो नि जग्गा मात्र आङी खैमा खैमा समस्या पर्दी र मार चुवल तुई बिसानारी बेल्ले छ्याबा कोपिम ओछे
1: हजुर किमे झोको लाइनी छाबा छाबा छाबा मारे डिजाइन गहना चैदी मिसा वा चुबल दुई बिसा रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खोऊ जु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट गलो धिताई पालिखी चोकै यावै क्यार मोहै
0: जग्गा मात्र आई रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकाने घिस शाखा पोखरा महेन्द्र पुलारी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडरे मुहै आसुम ल्यादो
1: समुदाय रवा ता क्रिबा ज्याला जाति क्रिबा छतैरा नत खैमा बिलन चन्न यामो
0: तोय निल तुई बिस्या रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकान महेन्द्रपुल पोखरा सम्पर्क 061-5808-15 98-5-60-35-8-15 प्रोप्राइटर दशरथ सुनार
1: छतैरा तान निबिम्द
2: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाकोट।